एक किस्सा तरती तेने से पानी मन्या गया समुंदर बड़ा वटे एक वरी देवतिया ने विचार कीती देखिए ता सही एडा वड़ा समुंदर है इस विच की चीज है केड़ी केड़ी वस्तु है पर एडे वड़े समुंदर विचों चीजा लभनिया ते ए देखना कि समुंदर विच की है बड़ा औखा सी सलाह कीती सारे क्यों ना समुंदर नू रिड़किया जाए जिस तरह दही है दही दे विच लस्सी भी मक्खन भी पर लस्सी ते मक्खन आपां नू उदों मिलेगा जदों आपां दही नू रिड़कांगे ते दही नू रिड़कण वास्ते मदानी दी लोड़ है रस्से दी लोड़ है समुंदर नू रिड़कण वास्ते भी मदानी चाहीदी रस्सा चाहीदा पर समुंदर अथाह है एडे वड्डे समुंदर वास्ते लकड़ दी मदानी बनानी बड़ी औखी तां सारियां देवतियां सलाह करके मंदरा चल पर्वत नू मदानी बनाया शेष नाग नू रस्सा बनाया शेष नाग नू उस पर्वत दे दुआले लपेटिया गया एक पासियों उस सप नू देवतिया ने फड़िया एक पासियों दैंता ने देवतिया विच विष्णु भगवान इंदर आदिक देवते ने दूसरे पासे दैंत बड़ी शक्ति ते ताकत वाले एक वरी साप नू शेष नाग नू देवत्या ने अपने वाल खिचिया एक वरी दैंता ने साप नू शेष नाग नू अपने वाल खिचिया ते ओ जड़ा पर्वत सी ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮਦਾਣੀ ਘੁੰਮਦੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਦੈਂਤ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ते सारियां तू पहला जहर निकलिया जहर बड़ा खतरनाक सी धरती ते सुट देने ता नुकसान बड़ा हुंदे ओ जहर शिवजी भगवान नू पीण वास्ते बेनती कीती गई ओ सारा जहर शिवजी भगवान ने पीता उस जहर दा असर शिवजी भगवान ते भी होया उन्हां दे गले दा रंग नीला पै गया इस करके शिवजी भगवान नू लोक नीलकंठ भगवान करके भी याद करदे जहर तों बाद अनेकां वस्तुआं निकलियां जिन्हां विच काम तीन गऊ पारजात दरखत लक्ष्मी अनेकां वस्तुआं निकलियां लक्ष्मी नू विष्णु भगवान जी ने अपना लिया पारजात दरखत नू इंद्र देव

करते हैं। धन गुरु नानक साहब ने पानी दे विच ऐसी झुब्बी लाई कि दोबारा उत्ते नहीं आए। सारे सुल्तानपुर लोधी खबर फैल गई कि गुरु नानक डुब गए, पर गुरु नानक साहब दे वड्डे भैण जी बेबे नानकी ओ कहन लगे मेरा वीर डुबया नहीं, क्योंकि मेरा वीर ते डुबदिया नूं तारण वास्ते आया। दूसरे पासे धन गुरु नानक साहब चुभी मारी पानी विच पहुंच गए सचखंड। अकाल पुरख दे सामने खलो के हाथ जोड़े ते नाले

सुत कंदे ने पुत्र तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख नु कहंदे ने ऐ अकाल पुरख तुसा क्या सी मैं अपना सुत तोहे निवाजा पंथ प्राचुर करबे को साजा ऐ दुष्ट दमन तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दा पहले जन्म दा नाम दुष्ट दमन सी ऐ दुष्ट दमन मैं तैनू अपना पुत्र बना के इस दुनिया ते भेज रहे एक नवा पंथ चलाने वास्ते ऐ अकाल पुरख हुण मैनू दस मैं कहो जी शकल कहो जी सूरत इंसान नू दया कहो जिया मैं पंथ चला मैं अपना सुत तो ही निवाजा पंथ प्रचुर कर बे को साजा अकाल पुरख दे चरणा विच बेनती की थी गुरु साहबां दी अखां बंद ने अखां दे सामने एक सूरत आई लत्तां पतलियां पर भार सहण वालियां चौड़ी छाती मत्था चमकदा अखां विच नाम दी लाली बोल फरकदे ने सोहना दाड़ा सिर ते दस्तार हाथ कड़ा गात्रे कृपान तेड़ कछहरा

आनंदपुर साहब, धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दा दरबार सजे है। एक पासे माइया बैठिया ने, एक पासे पुरुष बैठे ने। सिंघासन ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज विराजमान ने। गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होए है, कीर्तन हो रहे। अचानक धन गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह ने अखां बंद कीतिया सन, अखां खोलिया। एक पहरेदार सिख नू कोल बुलाया ते कहन लगे, सिखा कुछ दूर दरखत है, उस दरखत दे थले एक सिख बैठा रो रहे है। जाओ उसनू प्यार नाल साडे को ले आ। पहरेदार चला गया। दूर दरखत थले सचमुच एक सिख बैठा रो रहे है। अखां बंद नहीं, हाथ जुड़े हुए ने, पर बंद अखां विचों अथरू पै गिरदे ने। ते नाले कह रहे है, ऐ सच्चे पातशाह मैं की गुनाह कीता है, की पाप कीता है, काबुल तू आया तेरे दरबार पहुंच गया, पर तेरे दर्शन करन दा मैनू हुक्म नहीं। पहरेदार सिख पहला ते सुनदा रहा, फिर मोढ़ा फड़ के हिलाया ते नाले कहा, सिखा तू कोई पाप नहीं कीता, तेनू ते आप कलगियां वाले ने याद कीता। उससे कुठिया अखां पूंजदा होया पहरेदार दे नाल तुर पिया। जदों दरबार विच दाखल होण लगा, इत्थे भी इक पहरेदार खलोता सी। उसने कहा, ए काबल वाला सिख दरबार विच नहीं जा सकता,

खलोता पहरेदार कहन लगा, जेड़ा वड़ा मसंद है चेतो, ओदा हुक्म है इस काबल वाले सिख नू दरबार विच नहीं जान देना। ते सुन के नाल आया पहरेदार कहन लगा, जेड़ा चेतो मसंद दा मालिक है कलगियां वाला, मैनू ओदा हुक्म होया। ए सुन के पहला पहरेदार परां हट गया। सिख दे हाथ जुड़े ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सामने पहुंचे, दर्शन कीते, अखां विचों अथरू वगन लग पए। तीन दिन हो गए सन रोंदे आ, अरदासां करदे आ, गुरु दे दर्शन कीते, अपना सिर चरना ते रख दिता, ते कलगीधर पातशाह सिर ते प्यार नाल हाथ फेरदे ने, ते नाले बड़े प्यार दे नाल कहन लगे, सिखा काबल तू आए, तीन दिन हो गए ने तैनू रोंदे आ, सानू पता है, सिखा साडे नाल बड़ा प्यार करना है।

उस वक्त औरंगजेब सी। औरंगजेब दे जासूसा ने औरंगजेब नू जड़ी खबर भेजी, उहदे विच लिखिआ है तकरीबन 50,000 दे करीब लोकां दा इकट्ठ सी आनंदपुर साहिब। संगत बैठी।

महाराज मेरा सिर आजे रहे। दया राम नु बहु पड़िया, तंबू च लै गए, कृपान मारी सिर वड़िया। लहू नाल परी हुई कृपान लैके जदू साहब जी वापस आए, लहू परी कृपान देख के जड़े बैठे सन वो सारे कंब गए, जड़े दूर दूर बैठे सन वो उठ उठ के

जिन्हें पहला सिर दिता सी दया राम ने ओदे सामने खड़े होए। एक कमरे दा चुल्ला दया राम नु दिता, पीन दा इशारा कीता। दया राम ने अमृत दा चुल्ला जदू पीता, एक नवी बोली दिती ते गुरु साहबा ने कहा, कहो दया राम, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ते हुण पंजां दे नाम भी बदली हो गए। दया हुण दया सिंह हो गया, ते तुसी हुण शेर हो। ते जिहड़ा शेर है ओह कदी डरदा नहीं। हुण तुसां जुल्म दा मुकाबला करना है, जुल्म खत्म करना है, गरीबां दी मजलूमां दी रखिया करनी। जदों पंजां ने अमृत छकिया ते हुण पंजां दे मनां दी अवस्था ए हो गई, बाप दिलासा मेरो कीना, सेज सुखाले मुख अमृत दीना। साडे बाप कलगियां वाले ने अपने हत्थां दे नाल साडे मुंह विच अमृत पाया। हुण पंजां दे अगे हाथ जोड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खड़े हो गए कि सिखो हुण तुसी गुरु हो, हुण मैनू अमृत दियो। इस दुनिया विच एक नवी गल सी कि गुरु चेला बन गया ते चेले गुरु बन गए। दया सिंह कहन लगे, पातशाह असा सिर दे के अमृत लिया, तुसी अमृत मंगदे हो, तुसी की भेटा दियोगे? ता गुरु साहिबा ने कहा, मैं अपना पिता हिंदू धर्म दी राखी वास्ते पहला दे चुका, मेरा परिवार है, मेरा अपना आप सब कुछ भेटा कर दियांगा, पर मैनू अमृत छकाओ। पंजा प्यारिया गुरु साहिबा नू अमृत छकाया ते हुण गुरु साहिबा दा नाम भी बदली हो गया, गोबिंद राय तू गोबिंद सिंह। ते दूर सारियों एक सद उठी, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला। तन है गुरु जिहड़ा आपे गुरु बनिया ते आपे चेला बनिया, एक नवा राह दुनिया नू दिता। ए जरूरी नहीं कि गुरु हमेशा गुरु रह सकदा है ते चेला हमेशा चेला, कहन लगे नहीं। जदों खालसा साजे फिर कहा कि हुण तुहाडे विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।

जीव आत्मा दे पास केड़ी वस्तु पहुंचदी है? हजूर कहंदे ने गुर का बचन बसे जी नाले। ए जीव आत्मा तक पहुंच सकदा है गुरु दा बचन। गुरु दे बचन तो भाव है गुरु दा शब्द, क्योंकि हर पवित्र आत्मा दरगाह विच बैठी हुई अपने प्यारियां पासों मित्रों पासों ए मंग कर दी है। क्योंकि धन गुरु नानक पातशाह जी ने भी ए मंग कीती है, मेरे मित्रों ऐ मेरे प्यारियो, संमत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देव सजन असीसड़ियां। ते असीसां केड़ियां हन? हजूर कहंदे ने मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो, वेखना भाई मेरे पिछों किसे ने रोना नहीं, दुख नहीं मनाना। जे मेरे नाल सच्चा प्यार करदे हो तो मैं पिछे मेरे पिछे कीर्तन करना, मेरी याद में मैनू असीसां देनिया कीर्तन दियां, क्योंकि कीर्तन दियां असीसां ही जीव आत्मा तक पहुंच दियां हन। इसलिए हजूर कहंदे ने सम्मत साहा लिखिया मिल कर पावो तेल देव सजन असीसड़ियां। जे पुन होण तां पापां दा भार हल्का हो जांदा। कीर्तन ही है जो पापां दी निवृत्ति कर देंदा। गुरु दी शरण विच आके उसका जस करना यही दात एक नाल जांदी। गुरु दी शरण विच आ जाना बड़ी वड्डी गल है। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह घट घट दे जानन हारे परमेश्वर का रूप आज एक अलोकित आप चोज वरता रहे हैं। सच्चे पातशाह जी की उस्तुति सुन के एक बैरागी वैष्णो मत का साधु दर्शनों दे आया। आके की वेखदा है कि सतगुरु जी दे हाथ विच गुटार पंछी है, दूजे हाथ विच बाज फड़िया होया है। उस बाज ने गुटार दे मास नूं त्रोड़िया है, फिर दोबारा तोड़िया, बल्कि जद तीजी वेरा गुटार दे मास नूं तोड़िया तां बैरागी दे मन विच बड़ी शंका आई कि मैं तो सुनिया सी कि सतगुरु शांत मई दयालु अते दयावान हन, पर इना दे चित विखे तां बड़ी कठोरता है, रंचक मातर भी दया नहीं, गुटार तड़प रहा है। ते जिउंदे गुटार दा मास बाज कोलों तुड़वा रहे हन। अंतर जामी सतगुरु जी ने साधु दे हिरदे दी शंका जान के वचन कीता, हे संत जी, आप जी दे मन विच जो संशा उठिया है ना, आप नहीं जानते कि इना दे पिछले जन्म का की संबंध है। ए जो गुटार है राजी दा वजीर सी, जो बाज है ए पिछले जन्म विच वड्डा जिमीदार सी। जिमीदार ने अपना पिंड वसाया होया सी। इस वजीर ने झूठी तोहमत लगा के इसनू पिंड तो बाहर कढवा दिता, पिंड उजाड़ दिता, पर अपनी मेहनत और सच्चाई दे सदके इसने एक होर पिंड वसा लिया। वजीर ने फिर ईरखा करके इसका पिंड उजाड़ दिता,

हर घर ए हो पहुंचा सदरे नित पवन ए शब्दां तां नित ही पै रहियां हन असी सुनियां अनसुनियां कर देंदे हां जदों कोई मनुख इस संसार तो जा रहा होंदा है कोई अर्थी जा रही होंदी है ओ सानू चेता करा रहा होंदा है ऐ मनुख एक दिन तेरे ते भी ऐसा आएगा वो भी सदरे दे रहे दस रहे जदों मनुख सौ जांदा है ना रात नू ए मौत विखाली दे जांदी है हजूर ने इस मौत नू नित परलों के है कि हर मनुख ते नित परलों आउंदी है वो केड़ी आउंदी है जदों असी सौ जांदे हां तां मौत विखाली दे जांदी है दस जांदी है ऐ मनुख एक दिन सौवन होएगो लांबे गोड पसार एक दिन तू ऐसा सवेगा कि कोई तैनू उठा न सकेगा इसे लई सतपुरश कहंदे हन जदों सौ के उठिए तां इशनान करो भाई शरीर दी पवित्रता लई क्योंकि मौत भी खाली दे जांदी है ओ भी मौत जो नित परले है ए नींद है ते जदों श्वासां दी गंढ खुल जांदी है इस नूं नमित परलों के है कि जदों श्वास समाप्त हो जान तां मनुख अगला कदम नहीं पुट सकदा उत्थे ही मिट्टी दी ढेरी हो जांदा है उच्चारण करो श्री घर घर ए हो पहुंचा सदड़े नित पवन घर घर ए पहुंच है सदड़े पै रहे हन जिवें बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरां वाले क्या करदे सन भाई ए सदड़े गुरमुखां नूं अमृत वेले भी पैंदे हन उठ भाई गुरु के लाल ए मनुच्छा जन्म भी तेरा अमृत वेला है ते अमृत वेले उठ के इशनान कर सचखंड दे द्वार खुल गए हन गुरु जागदा होवे तू सुता होवे तां फिर प्रसन्नता नहीं भाई जे गुरु दी खुशी माननी है तां अमृत वेले उठ इशनान कर ते फिर सत संगत विच बह के जप श्री वाहे गुरु ताकि तेरा जीवन सफल हो जाए तेरा जमना मरना मिट जाए इसलिए घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदनहारा सिबरी ए सदा की कह रही हैं ए सदा कह रही हैं भाई सदनहारा सिबरी जिस वाहेगुरु ने तैनू भेजिया ना उसने सदना भी है मनुख एवें नहीं संसार विच आ गया अकाल पुरख वाहेगुरु ईश्वर दा कल्या होया है हजूर दी बाणी कह रही है जिहा चीरी लिखिया तेहे हुक्म कमाए कल्ले आवे नानका सदे उठी जाए ते जेड़ा कल्या होया आउंदा है जेड़ा किसे दा भेजिया होया आउंदा है ओ कोई जिम्मेवारी लैके आउंदा है कोई ड्यूटी लैके आउंदा है कोई कम करन लई आउंदा है ते अकाल पुरख वाहेगुरु ने भाई सानू संसार विच भेजा है भाई तू जाके सिमर सिमर नाम बारंग बार बारंग बार उस प्रभु दा सिमरन कर इसलिए तेनू सोना मनुच्छा जन्म प्राप्त होया ए एवें नहीं मिल गया ए बड़ा अमोलक जन्म है भाई लख चौरासी परम दया दुर्लभ जन्म पायो एक दस बंदियां दी क्यों भुगतानी होवे कितना समा लग जांदा है ते जिदी वारी चौरासी लख दे बाद आई होवे एक एक जून दी उम्र गिणीए तां कई जूनां विच ऐसियां भी हन जिन्हां दी हजार हजार बरस उम्र है लख लख बरस उम्र है जिवें पहाड़ां दी ब्रिशां दी कई कई हजार बरस ते हजूर कहंदे ने भाई कितने युगां दे बाद तेनू ए मनुच्छा जन्म मिलिया होवेगा अंदाजा ला लै कि लख चौरासी
84 ਲੱਖ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਬੂਆ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਮੂੜੇ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਤੁਧ ਵਿਸਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸੀ ਮੂੜੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਵਸ ਫੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਜੰਮ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਵੇਂਗਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਏ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚਾ ਪਾਂਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਪੱਕਿਆਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਘੜਾ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਟਨਕ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਕੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੱਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਸਿਦਕ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਇਹ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾਂ ਸਦੜੇ ਨਿਤ ਪਵਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਿਤ ਪੈ ਰਹੀਆਂ।

एक बारी सारे बोलिए धन गुरु तेग बहादुर साहब। कितनी सच्चाई प्रगट कीती है पातशाह जी ने, अखीर नतीजे ते पहुंच के आखिर

धन गुरु अर्जन देव पातशाह इस शब्द विच अकाल पुरख वाहेगुरु दे चरणां विच एक दात मांग रहे थे। हे वाहेगुरु, मेरे ते कृपा कर, मैनू नाम दी दात बख्श, क्योंकि नाम तो बिना होर जितने भी जीव दे कम हन कर्म हन ये त्रिग हन, ये किसे कम नहीं। क्योंकि नाम तो बिना जो पहनदा है खाउंदा है त्रिगकार है। सौ वेरा किसे नू लानत देइए, एक वेरा त्रिगकार कह देइए तो बराबर होंगी। आख्या बिना नाम तो बिना सिमरन तो पदार्थ जेड़ा खा रहा है, जो कूकर जूठन में पाए, जिस तरह जूठा जो लोग सुट देंदे हैं तो कूकर खांदे हैं। आख्या ओ मनुष्य भी उसे तरह ही खा रहा है, झूठ खा रहा है जे ओदे रसना ते सिमरन नहीं आया, अकाल पुरख वाहेगुरु दा नाम नहीं जपया। इसलिए नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए, मिल मेरे गो

शरीर दे नाल चोज कर दे जो मृतक मिथ्या शिंगा ओ तेरे इस तरह हन बिना सिमरन दे जिस तरह कोई मुर्दे दे ऊपर चंगे कपड़े पा देवे माड़े पा देवे उनू कोई फर्क नहीं पैंदा इसलिए बिना सिमरन दे जो मृतक मिथ्या सिंगार इसलिए मिल मेरे गोबे क्योंकि तेरे सिमरन तो बिना मनुख मनुख नहीं है।

तेरे जितने रस भोग तू सुखां वल भजदे चाहना के मैनू सुख दी नींदर आ जावे किवें आ सकदी है नाम विसार करे रस भोग सुख सुपने ने आख्या जेड़ा बंदा जेड़ा मनुख अपने इष्ट दा अपने गुरु दा सिमरन नहीं करदा उनू सुपने विच भी सुख दी नींदर नहीं पै सकदी सुपने विच भी सुख प्राप्त नहीं हो सकदा इसलिए

0: गुरु पातशाह ने इस पावन पवित्र शब्द अंदर गुरु दी पूजा दसी है। गुरु दी पूजा किवें करनी है, इसे तरह का ख्याल भगत कबीर जी देंदे हुए सानू एक गल समझांदे ने। कहिंदे ने हे मनुख हे इंसान, पूजा किवें करनी है। किसे ने कह दिता तीर्थ स्नान इयो पूजा है। हुण भगत जी इस गल नूं स्पष्ट करदे हुए उपदेश साडे तक पहुंचांदे हुए कहिंदे ने,
1: अंतर मैल जे तीर्थ नावै,
0: अंदर तेरे मैल भरी हुई है, अंदर तेरे गुनाह कठे कीते हुए ने, अंदर तेरे अवगण ही अवगण हन। भगत जी कहते ने जे तू तीर्थ स्नान करन भी चला जाए तू तीर्थ नूं भी गंदा करके रख देवेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतना गंद है, तेरे अंदर इतनी मैल है। भगत जी कहते ने वाकई लोगों ने अपनी मैल धो के तीर्थ नूं भी गंदिया कर दिता है, मैला कर दिता है। पर इत्थे हुण भगत जी कहते ने तीर्थ केड़ा है ते गुरु की पूजा की है। अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, वह बैकुंठ नूं नहीं जा सकता, ओनू कदी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। जे तीर्थ स्नान करन गया भी अपने अंदर दी उन्हें मैल नूं नहीं त्याग गया, अवगणा नूं नहीं त्याग गया, गुनाह नहीं त्याग गए, कहिंदे ने कोई फायदा नहीं तीर्थ यात्रा जाण दा भी।

बिन गुर चरणा पूजना, बिना गुरु दे चरणा तो पूजा सब कूड़ सुहाओ। सारे मनोरथ सब झूठ हन कूड़ हन। आरंभता पहले दिन इसे ही गलत होई सी कि हरी दे नाम तो बिना सब कुछ झूठ है। ते इत्थे भी सतगुरु ने उपदेश यही दिता है। ते भाई साहब भाई गुरदास जी इस गल नूं बड़े ध्यान दे नाल ते बड़े ख्याल नाल साडी चोली पा के कहिंदे ने कि जिहड़ा मनुख अपने गुरु दे चरणा तो बिना किसे होर नूं ध्याउंदा है भाई साहब कुछ झूठ है, सच नहीं है।

हर की पूजा दुर्लभ है संतो। हे संत जनो, हरि दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पाव है जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है, पर कहिंदे ने इह दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर देखन

ख्याल बड़ा सुंदर है। हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्योंकि हरि वाहिगुरु दे नाम तो बिना सब कुछ मैला है। ए तन मैला, ए मन मैला, ए तन मैला, ए संसार मैला, इस संसार दा विहार मैला। आ तुसी देखो हर पासे मैल है। इसलिए सानू सतगुरु जी उपदेश देंदे कहंदे ने हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, तो किवें पूजा करेगा, की पूजा लई चढ़ावेगा, क्योंकि सब कुछ तो मैल है, सब कुछ मैल है, सुचा की है, क्योंकि असी वो चीज परमात्मा की दरगाह विच अर्पण करनी है जो सुचा होवे। इसलिए सब तो पहले आपा तन सुचा करने, फिर मन सुचा करने, फिर तन सुचा कीता जांदा है, फिर गुरु दे अर्पण हुंदा है। इसलिए आपां उद्यम की करने हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोगा। क्योंकि गुरु दी पूजा विच बैठना है, गुरु दा सिमरन करना है, अपने आप नू अरोग बना ले, पहले अपने आप नू सुचा कर ले। जिस तक सुचा नहीं तू हुंदा ते गुरु दे अर्पण की करेगा। हर बिन सब किच मैला है संतो, हर बिन सब

हर साचे भावे सौ पूजा होवे। बस उस मालक नू पा दे फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस लॉ कानून के विच नहीं आता वह पूजा प्रवान नहीं होंगी। हुण साहब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख की पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहिंदा नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहा हां। कई लोग पगतावा ज्यादा करते ने। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है प्रगटावा ना करे, सेवा लगा रवे, सेवा लगा रवे। जो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन करने वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

शब्द मरे मन निर्मल संत। इस मन नु मारना है शब्द नाल। जदों असी इस मन नु शब्द नाल मार लांगे ते मन निर्मल हो जाएगा। बस जिस वेले मन निर्मल हो गया ए पूजा थाए पाई, ए फिर पूजा थाए पै जाएगी। बस कोशिश करिए इस मन नु शब्द दे नाल मार ली, ये मन निर्मल हो जाए। क्योंकि तुसी वेखदे हो कई बार पाठ करदे आ मन टिकदा नहीं, मन भटकन लग पैंदा, कदी इधर कदी इधर, कदी वो काम याद आ गया, कदी कुछ याद आ गया। हमेशा मनुख कुछ ना कुछ याद करदा रहिंदा। इहदा भाव की होया, मन टिकिया नहीं, मन एकागर नहीं होया। इत्थे फिर सहम कहिंदे ने शब्द दे नाल इस मन नूं मारना शुरू कर। जदों मन थिड़के फिर उन्हों खिंचो, जदों मन किसी पासे जाए फिर वापस ले आओ। बार बार उसनू वापस ले आने ते एक दिन मन टिक जाएगा। फिर जदों मन टिक गया फिर नहीं उखड़ता, फिर नहीं किसी पासे जाएगा। आस पास जो मर्जी हुंदा रहे फिर एकाग्र बैठेगा, क्योंकि मन टिकया होया है। ते मन टिकेगा ही तां जिसले शब्द दे नाल इस मन नूं मारांगे, ए मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल होने तो बाद फिर ए पूजा इस दर ते प्रवान होवेगी, क्योंकि असीं आउंदे साबां ते सब चाहते भी हाँ कि साडी हाजरी दर ते लगदा है। हाजरी दर ते भाई उसे दी लगदी जिहड़ा मन करके बैठदा है, मन करके सुनदा है, मन करके सुनांदा है, मन करके पढ़दा है, फिर मन हिरदे विच वसांदा है। हुण जबान तां बोल रही है, जबान दा काम है बोलना, कन्ना ने नहीं सुनिया। जद तक कन्ना नाल सुनिया ना जाए मन तक पहुंचदा नहीं। तीन गल्लां याद रखना, जबान नाल बोलना, कन्ना नाल सुनना ते मन ते असर होना। जद तक तुहाडी जबान दा तुहाडे कन्ना ने नहीं ना सुनिया मन कदी नहीं टिकेगा, मन ते कदी असर नहीं होवेगा। जे मन नूं टिकाणा है अपना बोल जोर दी बोलो। जिन्हां दा ख्याल है ना मन टिकदा नहीं, अपना बोल अपने कन्ना नूं सुनाओ। जदों बोल कन्न सुनन लग पै मन आपे कबूल करेगा, मन आपे मन्नेगा। जदों हुण मन ने मन लिया फिर सतगुरु कहिंदे ने सुनिया मन्निया मन कीता भाओ। सुन के मन्निया ते मन के प्यार उत्पन्न हो गया, अंदरों भावनी पैदा हो गई। सुनिया मन्निया मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मनना। यही तेरा तीर्थ स्नान है। यही गुरु साहब समझा रहे ने कि पूजा अंदर करनी है। तेरा नाम किया चरना ठिया, हे मेरे परमात्मा मैं तेरा नाम चंद, चंदन जिवें है ना, तेरा नाम चंदन है ते मैं चंदन दियां टुकड़ियां बना लईआं ने। ते जे मन उरसा होए, उरसा कहिंदे ने ओ सिल ओ पत्थर, ते ओ पत्थर बना के ओदे उत्ते किसना शुरू कीता है। ते साध संगत जदों मन चंदन बन के उस उरसा ते किसना शुरू हो जाए ते फिर ये मन कसदा।

जिम बुलावे तुम बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी तन गुरु नानक देव जीओ महाराज गुरु नानक पद पंकज बंदन गुरु नानक पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दुख नकंदन अमरदास गुरु

तेग बहादुर परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह वसाला तरों तरा तरपन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीसा जामै अमृत नाम है ज्ञान भक्त वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग गुर के शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कत।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखनी साहब दे विच वर्णन करदे हन। असी लोग ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असी किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच भरम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरह दे दुखां सुखां दे विच फसे हुए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए हुए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जेड़े परमात्मा दे नेड़े हुंदे हुए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मा बंधना तो रहत हो गए। बोलो
1: सतनाम।
0: उना दी महिमा देवत्यां तो भी उची है। देवते भी उना दी चरण तोड़ नू खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहंदे ने श्री सुखनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे हन शिव

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हां नूं देवत्यां दे विच सर्वोत्तम मन्ने गए हन। जा रहे हन किसे जंगल दे रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करदे हन, मत्था टेक रहे हन, धूड चक चक के मत्थे नाल ला रहे हन, धन धन कर रहे हन, धरती ते नमस्कार करदे हन बारंबार, जिन्हां नूं लोक नमस्कार करदे हन। पार्वती पुछदी है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किस नूं नमस्कार करदे हो, तुसी किस नूं मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो। भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ए धरती दा कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती दी ए समर्था है कि पवित्रता बख्श सकदी है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषां दा जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साडे लोगां वास्ते। भावें संसारक तौर ते महापुरुषां दे जीवन नूं कोई सास उस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असीं अपनी बोली दे विच ओह विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरुष जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह उन्हीं जिन्हां ने सात संगत जिन्हां दे नाम तों सारे लोग जानते हैं, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान सात संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह सात संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत सुणाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी साध संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओह डेरे दे विच होके जांदे, मिल के जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी ਵਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਕ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬਸ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦਿਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸਤਕ ਲਾਇਆ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰੰਤੂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਤਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਸ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪੱਚੀ ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬੋਲੋ
1: ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ
0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਤਨੇ ਮਿੰਟ ਨਮਸਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬਈ 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह नूं कि भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए। बोलो सतनाम, टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा इक वारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपदी मर्जी है, टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया। बोलो सतनाम, संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहंदे ने पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले दा तुसी कहंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असी बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, ना तुसी मत्था टेक दे, नमस्कार कर दे, 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दोबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है। बोलो सतनाम, भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर का भजन होया है, असी तो अपने आप नू नमस्कार करके मत्था टेक के चार्ज कर रहे सी। बोलो सतनाम, जिमें बैटरी डाउन हो जाती है कम करदी करदी, फिर उस नू चार्ज करन दी लोड़ पैंदी है। कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेक के असी अपने आप नू चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो सात संग जिथे वाहिगुरु दा भजन, वाहिगुरु दा सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे ने हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असी एवें नहीं कहंदे, इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे असी मत्था टेकदे हो।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरां द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी सिक्ख्या दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ऐसी गुरमुख की कठाली विच ढा लिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुआं की संगत करने वाला सी। बोलो
1: सतनाम।
0: साधुआं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी का सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्होंने बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुओं को बैठा करते, भाई फकीर को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुओं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जलदे नहीं हन। सो बाहर साध संदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया। वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही सिक्ष्या दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड्ड जांदा है, पिता जी कोल छड्ड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन, बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है। जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह। बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजा प्यारियां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजा प्यारे ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनू इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डणा। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो
1: सतनाम।
0: ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदीप सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालके च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतना दुनिया दी इक निगाह नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां वही अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: इह बड़ियां सास लम्मियां विचारां हन। सास बाबा जस्सा सिंह दा ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों भाई तैयार है? फिर इह लाइन बड़ी औखी है, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਭੇਸ ਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बाल क्या, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया है, कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़न वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू भी, दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: मुर्दा होए मरीज ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सत्संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सत्संग कीड़ियां दे पौन ते सुट देंदे, सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सात संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहिंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरू।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सात संग लेल दे विच सात संगत पा के गोले चलाउंदे, सात संग बाबा जस्सा सिंह दे मत्थे दे विच सात संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सात संग तुफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहिगुरू।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट कर रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। सात संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना नहीं।

हमारी जेहबा एक प्रभु हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपह आणिया हर तुम वड अगम अगा।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कवन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कवन गुण कहिए जेबा एक तू समरथ वड़ा मेरी मत थोरी राम मेरी मत थोरी राम हम अज्ञान अल्प मत थोरी मत थोरी तू समरथ वड़ा वड्डी हूं वड्डा।

जन नानक को हर बख्श रहे हो, जन नानक को हर बख्श रहे हो। हमारी जेहबा एक प्रभ हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे इयाणिया हर तुम मद अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाहा, सत संगत हर मेल प्रभ हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुठे मेल मिला हर कृपा।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु अमरदास जी महाराज, अपने इस पावन पवित्र श्लोक दे विच

तो जीवन एक यात्रा है और उस यात्रा के दौरान असी जो कुछ भी करते हैं वो असी गलत करते हैं क्योंकि सानू जीवन की विधि नहीं आती। जीवन की विधना है, असी सोचते हाँ असी सक्सेसफुल हो गए, असी कामयाब, पर सक्सेस के उत्ते जो गुरु महाराज जी का अपना विचार है, जो गुरबाणी की रोशनी है, असी बीइंग ए सिख सक्सेस नू गुरु बाबा जी चो ही समझना है ना कि गुरु साहब सक्सेस किसनू आखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक देव जी महाराज दी निगाह च सक्सेसफुल कौन है, सक्सेस की है, वो है कि जीवन दी यात्रा सफल हो जाए, जीवन जिस मंजिल ते पहुंचना चाहिए है उथे पहुंच जाए। बाबा जी सक्सेस दे उते शब्द उचारदे हन, कहंदे हन

प्यारी गल आ समझण वाली। स्त्री पुरख है खटिए भाव, स्त्री अते पुरख, स्त्री वास्ते पुरख अते पुरख वास्ते स्त्री एक प्रोडक्ट की तरह रह गया है कि इस तो मैनू मेरी जिंदगी च की फायदा हो सकता है, मेरे लिए बेनिफिट्स की हैं। मेरे स्वार्थ किमें पूरे होते हैं, मैनू सुख इस तो किमें मिलता है, ये नहीं कि इसनू मेरे तो सुख किस तरह मिलता है, नहीं, दोनों का टारगेट है कि मैनू सुख किमें मिलता है। खट्टी का भाव कि मैं की खटदा हां, वट आई अर्न आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, अते वो सारे का सारा वर्ल्डली सेंस के विच। अगर कहते कुछ नहीं मिलता जो एक्सपेक्टेशंस होंदियां हन, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरियां नहीं होंदियां तो कहते दोनों के दिलों के विच की आ कि भावें आओ तो भावें जाओ, भावें रहो तो भावें कट्ठे ना रहो। कहते इत्थे भी जीना नहीं आए, इत्थे भी समझे नहीं कि यह रिश्ता आत्मक सफर तय करने के वास्ते दो आत्मक पंध ही को ट्रैवलर इकट्ठे होने चाहिए सन, जिहड़े हैंड इन हैंड एक दूसरे को सपोर्ट करते, एक दूसरे को सपोर्ट करते करते दोने आपो अपनी मंजिल पर पहुंचते, एक दूसरे को दोने जाने सपोर्ट करते आपो अपनी डेस्टिनी पर पहुंचने वास्ते, पर दोने जाने एक दूसरे नू यूज एंड अब्यूज करते हैं फॉर देयर ओन परसनल नीड्स। इस करके कहते हैं वो परसनल नीड्स जब पूरी नहीं होंदिया तो कहते बेशक भावें आवो तो भावें जाओ, जो मर्जी चले जाओ, यू कैन लीव मी एनी टाइम एंड इट हैज बिकम सो ईजी एंड वेरी सिंपल थिंग नाउ डेज। कहते तो जीना ही नहीं है। महाराज जी असी बड़ी तरक्की की है, तुसी आखदे हो जीना नहीं आता, वट अबाउट ऑल दीज मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इतनी डिवेलपमेंट हुई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है, तो आखदे हो जीना ही नहीं आता। इंसान ने इंसान दे रोगों का इलाज कर ली, इतने वड़े वड़े हस्पताल बनाए, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि आज हार्ट सर्जरी कोई बहुत वड़ी चीज नहीं है, कितने कितने भयानक रोग जो हैं उन्हां दा इलाज आसानी दे नाल हो सकता है, स्कैनिंग्स हो सकती हैं, डायग्नोस अच्छी तरह हो सकता है, तो तुसी आखते हो जीना नहीं आ। महाराज जी आखते हां इसका अर्थ यह नहीं कि तुहानू जीना आ गया। महाराज दसो, एक शिष्य पुछता है सच्चे पातशाह दसो फिर किमें नहीं जीना आ गया, असं तो सोचते असं बड़ी तरक्की कर गए हैं, असं डॉक्टर बन गए हैं, हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं, बहुत बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी सी पैदा कर ली है, तुसी आखदे जीना नहीं है। वो कहते हैं सुनो, श्लोक सुनने वाला है, कहते हैं

share with somebody. ऐसा ना होवे कि लंगर दे विच बैठ के सारी गलबात ही तब्दील हो जाए. Then we forget everything. उसका अर्थ यह होया कि असी सुनाण वालों का भी टाइम वेस्ट किया और अपना भी टाइम वेस्ट किया. सानू शांति दे नाल, क्वाइटनेस दे नाल, चुपचाप होके अंतर ध्यान होके लंगर छक के चले जाना चाहिए. जहां गलबात होवे तो उसे ही टॉपिक से होवे जिसनों असी हुणे सुन के हटे हाँ, ताकि वह साड़ी याद दे विच रहे. सर तूल चुक दिखे मां, जीवन की विदना है. वाहेगुरु जी का खालसा. वाहेगुरु.

राजे, इको ऐसे राजे जो 300 साल पहलो भी तक ते बैठे सन ते आज भी बैठे हैं। इको ही राजे जिन्हां उत्ते 300 साल पहलो भी छतर झुल रहे सन ते आज भी झुल रहे हैं, ओ राजे हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी।

करके नितनेम करके सिमरन करके अपना मुख शीशे च वेख ली तेनू ओदे विचों ही मेरे दर्शन हो जाणगे। गज के आखो सतनाम। खालसा जी। बाबा दीप सिंह जी जदों ए सुनिया कि ओनू मैं अपना रूप बना देना ते कलगीधर पातशाह कहिंदे दीप सिंह उत्थे ही आ जा। जी पातशाह कोला मांजदा पिया। जी महाराज बड़ा रगड़िया कोला बहुत जपदिया जपदिया कीता। हां महाराज। ते दीप सिंह फिर कोले चो अपना मुख वेख नजर आउंदा। आखो सतनाम। कोले चो तेनू मुख नजर आना शुरू हो गया। कहिंदे कोला इन्ना लिशकाया सी कि जदों कोला वेखदे ने बाबा दीप सिंह जी ते कोले दे विचों अपना मुख की कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह दे दीदारे हो रहे ने। गज के आखो सतनाम। प्यारियो जिदी सेवा तो प्रसन्न हो जे ओनू अपना रूप बना दे। सच्चे पातशाह कृपा करन हाथ जोड़ के बेनती जे एक नाम जपण वाले दा दिहाड़ा आप जी मना रहे हो। इथों दे सारे गुरुख प्यारे जड़े सिख वेलफेयर सोसाइटी वाले बाबा दीप सिंह जी वेलफेयर एसोसिएशन वाले वाहेगुरु इन्हां सारयां नूं चढ़दी कला बख्शे।